0: कोरोना को लाभ दी आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनोस सानिमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस खुले जियौ
1: बैंजी खैमत बिली चौधरी एटीएम मोबाइल डे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आरी खई बिले तुई माध्यम क्यारे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषया न्यो कॉल पर जिमो समय न्यो ठगदिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषया बैंक दे नील पर जिमो न्यो तने सतर्क तना ठगदिल क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्याले जन हितरी जारी संदेश
2: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई।

0: बीमा को लाभ दी आप कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: समीची हो चौदह क्या में बोधे लोटी पड़ी रो बैंक ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
2: खाई खाई बहु कोई लोटरी बढ़ दिलवा
3: आंगे समीजो लोटरी पड़ती हूँ छापता ही गुदी
1: बढ़ दी आ बढ़ दी लोटरी खाली पड़ती बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आलन होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बने वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
3: सिद्धार्थ बैंक क्या रे जन हेदरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: चरक मेमोरियल हॉस्पिटल कर्मचारी संचय कोष द्वारा सूचीकृत अस्पताल
2: यस चरक मेमोरियल हॉस्पिटल मा कर्मचारी संचय कोष का संचयकर्तालाई रु 1,00,000 सम्म को उपचार सहुलियत कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना स्वास्थ्य योजना अंतर्गत वार्षिक 1,00,000 बराबर को स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिदै आएको छ।
1: घातक रोग जस्तै मुटु रोग मुटु को शल्यक्रिया कैंसर मृगौला रोग डायलिसिस मस्तिष्क को रक्त आदि रोग को उपचार को लागि रु 10,00,000 सम्म को उपचार खर्च सहुलियत प्रदान गरिन्छ।
2: सेवा लिने क्रम मा चाहिने जानकारी
1: संचय कोष मा दर्ता गर्दा राखेको नाम उमेर जन्ममिति र कोष को नम्बर
2: भर्ना बिरामी को लागि मात्र यो सहुलियत सेवा उपलब्ध गराइएको छ।
1: साबिक का संचयकर्ता तथा उनका श्रीमान श्रीमती को लागि मात्र यो सेवा उपलब्ध छ।
2: विस्तृत जानकारी का लागि चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा फोन 061-552-493-552-494-582-778।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनाओ सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 8 बज्यो।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जीऊ।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: निकट मा दीदी बहिनी, विकट मा दीदी बहिनी, यो रेडियो दीदी बहिनी 95 थोपलो

0: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 MHz। यो रेडियो दिदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक 6 बज्यो।

0: Radio NRN
1: 99.1. ओए साथी, हेरा नहीं, क्या खतरा समाचार आई शक? बाप रे, अब ऐसे क्यों नहीं हो?
2: कोई कोई, क्या आया इसको? हाँ, इतनी के पत्ते ऐसे हो रोहन, सामाजिक संजल माहौल में इतनी के पत्ते उन पर सदा मिथ्या र ब्राह्मक सुजना होना सकता, इसे नाती ना, ये सब तो जल्दी नहीं आ सकनी।
1: अरे, मिथ्या ब्राह्मक बन जा, क्यों ये होने को चाहिए?
2: तुमने था थे ना?
1: था थे ना?
2: सुनो, मिथ्या सूचना बने को आखले था नहीं ना पाए को कुरा लिखने वा फैलाऊने कुरा हो, अने ब्राह्मक सूचना बने को जे जानी जानी नियत बस अपना फायदा वा स्वार्थ का लागी फैलाऊने गलत सूचना हो, इस्ता सूचना ले समाज लाई भ्रमित बनाऊं छा, खंडित पार छा, निराशा बढ़ाऊं छा र अविश्वास पनि सृजना गर्छ।
1: ओहो, त्यसो भए त यस्ता सूचना शेयर लाइक गर्नु हुँदैन रहेछ है?
2: हो नि, भ्रामक र मिथ्या सूचना शेयर तथा कमेन्ट के पनि गर्नु हुँदैन। शेयर गर्ने भए पनि त्यो सूचना सत्य तथ्य हो कि होइन यकिन गर्नुपर्छ, त्यसको स्रोत थाहा पाउनुपर्छ, मिति र फोटो मिल्छ कि मिल्दैन राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, आधिकारिक माध्यम हो कि होइन त्यो पनि थाहा पाएर मात्रै शेयर र कमेन्ट गर्नुपर्छ, बुझ्यौ?
3: भ्रामक सूचना नफैलाऊ, जिम्मेवार नागरिक बनाऊ,
4: आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई मात्र विश्वास गरौ।
0: नेपाल सरकार विज्ञापन हो।
5: हरि शरण, म लक्ष्मी भुसाल सुनिराछु रेडियो एनआरएन 99.1।
6: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो फिल्मी मेलोडी।

क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक काम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबे अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो